श्रोताओं, समय का पहिया जैसे ही घूमकर जुलाई के महीने पर आकर रुकता है तो कलाम साहब की यादों की खुशबू जैसे हमारे चारों ओर फिजाओं में तैरने लगती है। उनकी जीवन की विस्तृत किताबों के कई पन्ने बेहद खास है, लेकिन इस महीने से जुड़ी दो तारीखें 25 जुलाई और 27 जुलाई अक्सर हमारे जहन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। आज हम किसी उलझन या भ्रम की बात नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों तारीखों के उस खूबसूरत गहरे और विस्तृत अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जो हर उम्र के भारतीय के लिए किसी बड़े प्रेरणा से कम नहीं। ये दोनों ही दिन डॉक्टर कलाम के महान जीवन के दो अलग अलग लेकिन बेहद अहम और गौरवशाली पहलुओं को दर्शाते हैं। एक दिन उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मान और शिखर का प्रतीक है, तो दूसरा दिन उनके उस महाप्रयाण और कर्तव्य निष्ठा जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।

0: आपका स्वास्थ्य विशेषज्ञ देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाइए।
1: RRIH बेतापाड़ा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं 25 जुलाई की। यह हमारे जीवंत लोकतंत्र के इतिहास का वो सुनहरा और ऐतिहासिक दिन है जब साल 2002 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर आम आदमी को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। रामेश्वरम की तंग गलियों से निकला एक साधारण सा बालक, जिन्होंने कभी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सुबह सुबह अखबार बांटे थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सांसद के उस ऐतिहासिक कक्ष में जब उन्होंने पद की शपथ ली तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी बल्कि पूरे देश के करोड़ों सपनों की जीत थी। ये दिन कहता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।

0: आज ही अपने स्वास्थ्य के लिए उठाएं सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवा का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: वहीं दूसरी ओर जब हम 27 जुलाई 2015 की बात करते हैं तो आंखें थोड़ी नम जरूर होती है। वो एक भावुक दिन था जब ज्ञान का यह चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए अनंत आसमान में विलीन हो गया, लेकिन उनके जाने का तरीका भी उनके जीवन की तरह ही महान और प्रेरणादायक था। मेघालय के शिलांग की शांत और खूबसूरत वादियों में IIM के छात्र के बीच अपना सबसे प्रिय काम यानी युवा पीढ़ी को शिक्षित करते हुए और उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जरा सोचिए।

एक सच्चा शिक्षक जो जीवन भर ज्ञान का प्रकाश बांटता रहा, उन्होंने जाते जाते भी अपने विद्यार्थियों के बीच ही अपना अंतिम फर्ज निभाया। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी साबित कर दिया कि वो एक ताउम्र गुरु थे।

0: श्रोताओं, आने वाले समय में जब भी आपके कैलेंडर के पन्नों में ये दोनों दिन आए तो इन तारीखों को महज एक दिन समझकर मत गुजार जाने दीजिएगा, बल्कि इन्हें अपने दिल में एक अनमोल धरोहर की तरह संजो कर रखिएगा। इसी खूबसूरत, भावपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों के साथ परागमाला लाइव के आज इस खास सफर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कलाम साहब की ये सुनहरी यादें आपके आज के दिन को और भी रोशन करेगी। मैं सीमा राउत, दीजिए इजाजत। तब तक बड़े सपने देखिए, सपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते हुए सुनते रहिए परागमाला लाइव। नमस्कार और धन्यवाद।
1: पराग माला। पराग माला।
2: पराग माला लाइव खुनिले आगबढ़ाले सीमा राउटे एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु विज्ञान धारावाहिक।
3: শ্রোতাসকলক নমস্কার জনাই আৰম্ভ কৰিছো বিজ্ঞান ধাৰাবাহিক সমাগত সময়। এই ধাৰাবাহিকৰ আজিৰ খণ্ডৰ শীৰ্ষক গেমিং আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। মূল ইংৰাজী নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ ডক্টৰ কন্দৰ্প কুমাৰ শৰ্মাৰ। এয়া শুনক বিজ্ঞান ধাৰাবাহিক সমাগত সময়ৰ নৱম খণ্ড।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज

के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the sibling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Sameh 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई, इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख

0: और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे

0: के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बारबसा

0: को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

आरुन्थु सरलामथे पिन्य सरलामथे के सारमार पेन आरा ओसोमार पेन जकान पांग पेन बिपान लामथे के मान आकेसारा तुम जुन्दे दबांके हर आरा पुलुते आनिंग आरोंलो उस मार्टा जकानलों कर्जाब के अनिंग के हंग आकाम आसोनलो हेमता पांग पुलुते पीबान पिकॉक लपेंते पिनीबान करवाक ठुके चेलोंजत भिनो लसी पालाम थेदाम लसी सारलाम थे पुलो सारमार पेन आरा ओसोमार पेन जकान पांग पेन पीबान पिन्या सारलाम थे के लपानी चलो

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादाब फरायदों मनजित बसुमतारिया। आसामनि बानानि थासारिया दासिमबो साननांगौ महरैनो दं। बानाजों लोमजानाय जिल्लाफोरनि खायसे खायसे हालामाव दैया रानबायब्लाबो गंजिनै जिल्लानि गं 856 गामिया बानायाव गोदोनानैनो दंबाय दं। बानानि जाहोनाव खरसा आसामनि शिवसागर, सरायदेव आरो जरहाट जिल्लायाव बांसिनै खहा जादों। बे खेबनि बानायाव 751,000 बांसिन सुबुङा खहानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बानानि जाहोनाव मैया आरोबाव 14 सुबुङा जिउ गोमायो। बेफोरनि गेजेराव शिवसागराव 6, सरायदेवाव 7 आरो जरहाटाव 1 सुबुङा थैयो। बिसोरखौ लाफानानै हादरसायाव बे खेबनि बानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अन्जिमाया गासै 61 जाहैबाय। आसाम हादरसायारि खैफोदसुंथा बिफाननि सुलुं बायदियै दासिम बानायाव 16,606 हेक्टरनिबो बांसिन आबाद हाया लोमसावजोबजादों। बानाजों लोमजानायफोरनि थाखाय गायसनजानाय जिराय बादाफोराव 115,000 बांसिन सुबुङा बादा लानानै दं। खरसा आसामनि गेजेरजों बोहैलांनाय दिखौ दैसां आरो धोनसिरिजों गोसोनां दैमाफोरा खैफोद सिमानि साजों बोहैलांगासिनो दं। निपक'नि दैयां दै मोब्लिब मावथांखिनि दै दाहारनि दैया बांनायनि थाखाय मावथांखिनि मोनब्रै स्लिप वे गेट खेवनानै होनो गोनां जादों। गिबि मन्त्री ड. हिमन्त बिश्व शर्माया सरायदेव जिल्लानि 100% थावनियाव अनसुंथाय मुवा रान्नाय जादोंब्लाबो नाजिरा बियाबनि 30% आरो शिवसागरनि 20% सुबुंजों दासिमबो खुंथाया सोमोन्दो गायसननो हानाय जायाखै होन्नानै फोसावदों। रादाबमेलाव गिबि मन्त्री ड. शर्माया बुङोदि बानायाव सरायदेव जिल्लानि मोन्थाम बेंखन खोन्दो मावख'नि गं 152 गामिनि 133,159 सुबुङा खहा जाजादों। जिल्लायाव बानायाव 10 सुबुंनि जिउ गोमाबाय होन्नानै गिबि मन्त्री बिथाङा मिथिहोयो। एखे रोखोमावनो शिवसागर जिल्लानि मोनबा बेंखन खोन्दो मावख'नि गं 333 गामिनि 530,000 सुबुङा बानायाव लोमसावजादों। जिल्लायाव बानायाव थैनाय सुबुंनि अन्जिमाया जाबाय 21। दैया लासै लासै रान्नो हमनायनि जाहोनाव बानाजों खहा जानांजानाय हालामफोराव जाहाथे जेबो फोजोबस्रां बेराम आजार जाया बेनि थाखाय हादरारि सावस्रि अभियाननि फारसेनिफ्राय दावबायनाय फाहामथाय सिबिथायनि राहानि अनगायैबो डिब्रुगड़ आरो जरहाट फाहामथाय फरायसालिमानि फाहामगिरिफोरनि दोलो थिसननाय जादों होन्नानै गिबि मन्त्री बिथाङा फोसावदों। ड. शर्माया गावनि हानाय बायदियै गिबि मन्त्री अनसुंथाय पुजिसिम अनसुंथाय हरनो हांख्राय हरदों। मिरु सरकारा आसामनि बाना लोमजानाय रायजोफोरनि सेराव गसंफैनो बिबान दं होन्नानै मिरुनि बन्दर, जाहाज सालायनाय आरो दैलामा बिफाननि मन्त्री सर्बानन्द सन'वाला फोसावदों। हादरसानि बाना थासारिनि बागै गोदान दिल्लीयाव मैया मोनसे रादाब मेलाव बे खोथाखौ फोसावनानै बिथां सन'वाला बुङोदि मिरु मन्त्री आफादनि जथुमाव दासिम आसामनि बानानि थासारिनि सोमोन्दै जर'खायै आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बिथाङा खहा जाजानाय सुबुंफोरनो गासिबो रोखोमनि मदद अनसुंथाय हरनो मिरु सरकारा बिबान दं होन्नानैबो मुख'बावो। हादरसा सरकारनिफ्राय मोननाय खारिथिनि सायाव सोनारनानै मिरु सरकारनि केबिनेट जथुमाव आसामनि बाना थासारिनि बागै आबुङै सावरायनाय जायो होन्नानै बिथाङा रादाब मेलाव मिथिनो होयो। जोबोर थाबैनो मिरु सरकारनि मोनसे बाहागो लागिरि दोलोआ आसामनि बाना थासारिखौ बुजिना लानायनि थाखाय आसामाव फैगोन होन्नानै बिथाङा मख'यो। बानायाव खहा जाजानाय सुबुंफोरनि फिन सुंथाफिननाय बेलायाव हादरसा सरकारखौ मिरु सरकार

सरकारा गासैबो रोखोमनि मदद अनसुंथाय होगोन होननानै बिथाङा बिबुंथि बावो। हादरसायाव 2014 मायथाइनिफ्राय थांनाय 16 जुलाइसिम 13 बोसोराव बाना बारहुंखा आरो सारन्थायाव गासै 1567 सुबुङा जिउ गोमाबाय। खाजोना आरो खैफोद राहा बिफाननि मन्थ्रि केख' महन्तमैया आयेन आफादाव बे खोथाखौ फोरमायो। 2026-27 रांखान्थियारि बोसोरनि जागायनायावनो हादरसायारि खैफोद बानस'नाय पुजिनि सिङाव सरकारनि आखायाव 1600 कौटिसो रां जमा दं होननानै मन्थ्रि बिथाङा सदनाव फोरमायो। गुवाहाटीनि ज्योति विष्णु हादरसा गेजेरारि हारिमु मन्दिराव दिनै फुंनि जिरिंगानिफ्राय आबाद गुदिनां मुवा पुजि आयदायाव मोनसे मावबादा आरो सांग्रांथि मावफारि जानायनि खोथा। गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त विश्व शर्माया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायनि खोथा। भारत आरो जिम्बाब्वेनि गेजेरनि खेब थाम टी ट्वेन्टि क्रिकेट मेचनि नैथि खेब गेलेया दिनै हारारियाव जागोन। गेलेया बेलासि 4:00 रिंगायाव जागायगोन। भारता दासिम मेचाव 1-0 फिथायाव सिगांनानै दं। भारता दाखालै दाबसे थावनियावनो गेलेनाय मेचनि गिबि खेब गेलेयाव नखरारि दोलो जिम्बाब्वेखौ 7 विकेटआव फेजेनो। भारता बैभव सूर्य बंशीनि गोसोबोथाव हाफ सेन्सुरिनि मददाव 13 अभार आरो थरनै बलाव थाद'आलासे 126 रानजों देरहानाय थांखियाव सौहैनो हायो। बेनि सिगां जिम्बाब्वेया गिबियाव बेट हमनायनि हांख्रायनाय मोननानै थिखानाय 20 अभाराव मोनस्नि विकेट खोमानानै 125 रान बुथुमो। गाबोन मेचनि थामथि आरो जोबथि खेब गेलेखौ गेलेगोन। रादाबा एसेनोसै। एसे सम नोंथांमोना दिनैनि रादाबखौ खोनासंनो मोनबाय।

0: खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी गिबियावनो गासैबो खोनासंगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो FM बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव। आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरी सेन्टारनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोना उननि हाबाफारिफोरखौ खोनानो मोनलांसिगोन। मेलेरिया बेरामा रोखोमसे गिलुबालु बेराम। नोंथाङा खनले खनले लोमजाबाय थायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै थैखौ आन्जाद खालामनो हो। उन्दुनाय समाव थाम्फै अरजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मुसारि सोंनानै उन्दुनो दाबाव। लोंनाय दैखौ सरनानै ग्लब ग्लब गोदौजासे फुदुंना गुसु खालामनानैसो लोंनांगौ। मेलेरिया बेरामा साग्लोबनो हायैबादि न'खरनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो जानाय लोंनायाव सांग्रां जाथार। मेलेरिया बेरामनि थाखाय देहा फाहामगिरिया सुबुरुन होनाय बादि मुलिफोरखौ जाथारनांगौ। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानियाबो सावनो लादों रंजालि आफादनि आयदा। दिनै रंजालि आफादनि आयदायाव खोनासंहोनो लादों आगोलावनो फोसावखांनाय मोनसिं सिं सोलोंसालि बाथौ आश्रम बर'मानि रंजालि आफाद आयदाखौ। हान्जाखौ दैदेनदोंमोन चन्द्रधर रामसियारिया।
1: दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायजों मोनसिं सिं सोलोंसालि बाथौ आश्रम बर'मानि रंजालि गथ'फोरनि आयदाखौ दोंसे बाथौ आर'जजों जागायनो लानाय जाबाय।

0: फंबाई बिनानावमोन फैदो दानिया जों नोंसोरनि खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ रोजाबनाय खोनासंदोनि अ बिनानाव नोंनि मुङा मामोन लायो
1: आंनि मुङा थरायना मिथिंगा हुरि मोसाहारि
0: नों मा खालाम सान्दों
1: आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सान्दों
0: दे आवरायनायसै
1: सिखिरि नुयो बेसे समायना ओइ सिखिरि सिखोला गां फुवार फुवार नों मोसायो बोला बाहां बिरहां बिबाराव बिदै सोबदों गोसो मोदोम जिउ बेसेदि गोजोनदों गोमो गोथां बाथ' गां बिबार बारियाव रिथि रिथा नोंनि गांनां बिरबायनायाव नोंनि समायना महराव जों गोमोहाबो हायलालाय हुइलालाय मोसानो गोसो जायो खुलुमबाय
0: जोबोर मोजां खन्थाइ आवरायना खोनासंहोबाय मिथिंगा फुंग्रि मोसाहारि अ बिनानाव नोंनि मुङा मामोन लायो
2: आंनि मुङा थरायना जेवारि मायनाव बर'
0: नों मा खालामनो सान्दों
2: आं दोंसे गोदान मेथाइ खननो सान्दों
0: दे खननायसाय

0: फंबाय बिनानावमोन बे मेथाइखौ खोनानानै नोंसोरो माबायदि मोनखो? नंगौ। आरो जोंनि सेराव सासे बिनानाव दंबावो, बिनानाव नोंनि मुंखौ खोन्थानायसाय।
1: आंनि मुङा थलायना रोंखुंग्रि रामसियारि।
0: नों मा खालामनो सान्दों?
1: आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सान्दों।
0: दे बिदिब्ला आवरायनोसै।
1: समनि खामानि, सान ओंखारबाय फुं जाबाय, दावसिन दावला सिरि मोनबाय, बिथरायफोर सिखारनो जाबाय, लेखा रेब गनलानो जाबाय, फुं सम नेबाय थाया, बिथराय बैसो मोनबाय थाया, समा बिदिनो बयनिबो सिगां, जिउआ बिदिनो सोलिनो गोनां।
0: साबायखर बिनानाव, फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सिनस्रिया मा मिथिगौना?

जोंनि गेजेराव सासे उन्दै बिनानाव फैदों खुगा मेथाइ रोजाबनो बिनि मुङानो जाबाय जिउमा स्वर्गियारि जिउमा स्वर्गियारि बिनानावा नोंसोरनो दोंसे खुगा मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोगोन दे बिनानाव रोजाबनायसाय

0: बेसे गोजोन खोनायो जोंनि बे खुगा मेथाइआ नङा ना दानिया जोंनि सेराव सासे बिनानाव दं बिनानाव नोंनि मुङा मा खोन्थानोसै
1: आंनि मुङा थरैना फुलरानी बर'
0: नों मा खालामनो सान्दों
1: आं सोंथि मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों
0: दे सोंनायसाय

0: फंबाय बिनानावमोन जों जोबोद मोजां दोंसे जावजा मेथाइ खोनासंनो मोनबाय नङासै बे मेथाइखौ नोंसोरनो सोर फोरोंनाय
1: फोरोंगिरिया
0: नोंसोरनि फरायसालिनि फोरोंगिरिया नामा दानिया जोंनि सेराव सासे फंबाय दङ फंबाय नोंनि मुंखौ खोन्थानायसै
2: आंनि मुङा मुस्लिनिना कुमार रामसारि
0: नों मा खालाम सान्दों
2: आं गिरिमा सुंनि बोसोन बुंनो सान्दों
0: दे बुंनायसै
2: महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन मानसिया मुगैना आंखौ नरकाव दैथायहरनो हाया बाखनायनाबो आंखौ सोरगाव दैथायहरनो हाया आं जेरै दं बिदियैनो थागोन स्वामी विवेकानन्दआ बुंदोंमोन जों बै सोलोंथाइखौ लानांगौ जाय सोलोंथाइयाव आखु सोलो बांहोयो साफ्रामखौबो गावनि आथिङाव गसंथानो फोरोङो आरो मदाराम ब्रह्मआबो बुंदोंमोन दंफां गाखोनोब्ला दालाय नांगौ हारि हारिखौ दिखांनोब्ला लेखा नांगौ खुलुमबाय
0: फंबाय बिनानावमोन जोङो गेदेमा सुबुंनि बाथ्राखौ फालिनांगौ नङा ना नोंसोरो गिदिर गोलाव जानोब्ला गेदेमा सुबुंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिदे बिनानाव नोंनि मुंखौ खोन्थानायसै
3: आंनि मुङा थरायना हायनासि बर'
0: नों मा खालामनो सान्दों
3: आं दोंसे आर'ज मेथाइ खननो सान्दों
0: दे खननायसै

एसएसएम नोंथांमोना दिनैनि रंजालि आफादनि आयदायाव आगोलावनो फोसावखांनाय मोनसिं सिं सोलोंसालि बाथौ आश्रम बर'मानि रंजालि आफाद आयदाखौ खोनासंनो मोनबाय। हान्जाखौ दैदेनदोंमोन चन्द्रधर रामसियारिया। बेजों लोगोसे दिनैनि रंजालि आफादनि आयदाया एसेनोसै। नोंथांमोना फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाइनि मिडियाम वेभनि 411.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्जआव। आरोबाव आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्जआवबो रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो फोसावनायखौ खोनासंनो मोनगासिनो दङ। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। दानिया फोसावनो लादों मेथाइनि आयदा। दिनै मेथाइनि आयदानि गिबियावनो खोनासंहोनो लादों माधुर्जरानि बर'नि गाराङाव लासित बसुमतारिया सुजुनाय नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ।

एसे सम नोंथांमोना दिनैनि मेथाइनि आयदायाव माधुर्जरानि बर'नि गाराङाव दोंनै गोदान मेथाइ खोनासंनो मोनबाय। आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु मेथाइनि आयदायावनो दानिया खोनासंबावदोनि घनकान्त बसुमतारिनि गाराङाव खुगा मेथाइ।

घनकान्त बसुमतारीनि बेदेंसे खुगा मेथाइजोंनो दिनैनि मेथाइनि आयदाया एसेनोसै। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। सम जानानै फैनाय लोगो लोगो गासिबो खोनासंगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन खेबसे बावजासे हरफिनबावनानै दिनैनि बर' आफादखौ एसेयावनो थुंगे होनाय जाबाय। गोजोन्थों।

0: সোনা নীলু চক্রবর্তীর। দিনৰ 1:50 বৃন্দগান, বিয়লি 2:30 পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান, 3:05 তৰালী শৰ্মাৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত, 3:15 নেপালী অনুষ্ঠান, কাৰ্বি অনুষ্ঠান 3:45 আৰু 4:30 বড়ো অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব। অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি ইমানেই। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু, আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষণা হিন্দীত শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আপ সভি কা আজ কে প্ৰগ্ৰাম মে বহুত বহুত স্বাগত হে। মই হু আপকি দোস্ত অৰ শো কি হোষ্ট সুতাপা ৰয়ে। ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী কা মহাবাহু চেনেল হে। হম আজ বাত কৰেংগে হিন্দী লেসন মে সংজ্ঞা অৰ সৰ্বনাম কে বাৰে মে। পহলে হম বতাতে হে কি সংজ্ঞা আখির হোতা ক্যা হে। সংজ্ঞা কা শাব্দিক অর্থ নাম হোতা হে। প্রত্যেক বস্তু কা কোই না কোই নাম জরুর হোতা হে। কিসি ব্যক্তি বস্তু স্থান ভাব গুণ এবং অবস্থা কে নাম কো সংজ্ঞা কহতে হে। অর্থাৎ কিসি কে লিয়ে প্রযুক্ত হোনে ওয়ালা শব্দ উসকে লিয়ে সংজ্ঞা কা কার্য করতা হে। সংজ্ঞা এক বিকারী শব্দ হে, অর্থাৎ ইসমে লিঙ্গ বচন এবং কারক কে আধার পর পরিবর্তন কিয়া যা সকতা হ্যাঁ। সংজ্ঞা কে ভেদ কো লেকর ব্যাকরণ কে জ্ঞাতা একমত নহীঁ হ্যাঁ, কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকরণ সংজ্ঞা কে পাঁচ ভেদ মানতে হ্যাঁ। যো সংজ্ঞা কে তিন ভেদ মানতে হ্যাঁ বে দ্রববাচক এবং সমূহবাচক শব্দ কো জাতিবাচক সংজ্ঞা কে অন্তর্গত রাখতে হ্যাঁ। ইস প্রকার সংজ্ঞা কে পাঁচ ভেদ হ্যাঁ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम इन पांचों के बारे में विस्तार रूप से आपको आज बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रिया, पंकज, भारत, लैपटॉप, गंगा, हिंद महासागर, रामचरितमानस, होली, दिवाली आदि। उपयुक्त सभी शब्द किसी एक का ही बोध करा रहे, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एक एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो यह समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों महीनों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, गाय, बकरी, नगर, पशु, पक्षी, इस प्रकार के। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्रकृति आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त आदि नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, ममत्व, शाबाशी, अपनापन, मनुष्यता, पंडिता, मित्रता, मूर्खता, घबराहट आदि। समूहवाचक किया। अब हम आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति

एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, ढेर, मंडल, गुच्छा। ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज हम जानकारी देते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। व्यक्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकें, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक निश्चित अर्थ ना प्रकट करते हों, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, नाक, आज, कल, पर आदि। यदि कमल शब्द के खंड कमला के रूप में कर दिए जाएं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अंततः कमल एक रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक संज्ञा। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से बने हों या ऐसे जिनके खंड सार्थक हो, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। विद प्लस आलय, विद्यालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। गुड़ प्लस सवार, घुड़सवार। अब आप समझें कि यौगिक संज्ञा दो सार्थक शब्दों से बने हुए हैं, इसलिए इसे हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी अन्य को संदर्भित करें, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पंकज, इसका मतलब होता है कमल। पंख मतलब कीचड़ और जा जन्म लेने वाला। तो पंकज मिलके एक नया शब्द का अर्थ बन रहा है। लंबा धन उदर, लंबोदर अर्थात गणेश भगवान। चक्र प्लस पाणी, चक्रपाणी अर्थात विष्णु भगवान। ये हुई संज्ञा की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ सबका अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों के पुनर्वृत्त को रोकने के लिए किया जाता है। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना दे रहता है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ये है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। चलिए हम पहला सर्वनाम शब्द समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुझे आदि। अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वो, उनका, उनको, उसके, इसने आदि। उत्तम पुरुष, व्यक्ता या लेखक, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता

लगता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं हम लेकिन सर्वनाम में कारकों को विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो सकता है जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत में ही आते हैं। जैसे मैं बनारस जा रहा हूँ, हम शादी में जा रहे हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुष की ओर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले श्रोता के लिए करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम क्या करते हो, आपको क्या पसंद है। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध व्यक्ति और श्रोता से ना होकर किसी अन्य से हो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए ना करके अन्य के लिए किया जाता है। यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है।

की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह अभय की गाय। सर्वनाम का दूसरा रूप है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जो निकट पास या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह अभय की गाय है, वह मकान मेरे भाई का है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई आपसे मिलने आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं संबंध वाचक सर्वनाम की ओर। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा काम वैसा दाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी शब्द का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या आप घर भी जाएंगे, कौन खेल रहा है, यह काम कैसे होगा। अब छठा और आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों उत्तम मध्य एवं अन्य में निजता का बोध कराते हैं वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूँगी, मैंने आप अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए ज्ञान रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুত খন্তেক পাছতে সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है।

0: है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
4: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा

0: जो भी विषय रखे गए हैं, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान

भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र

0: दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश

0: पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আৰম্ভ কৰিছোঁ চিত্ৰগীত অনুষ্ঠানত। প্ৰথমে শুনক কাঞ্চনজংঘা ছবিৰ এটি গীত জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবলি বৰুৱাৰ কণ্ঠত।

0: আর্থিক জরুরী অবস্থা কেতিয়া আহি পড়ে সেয়া আগতীয়াকৈ কেতিয়াও কব নোৱাৰি। এনে সময়ত বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত ল'লে যিকোনো অসুবিধা সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি।
1: বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সকলোৰে বাবে মান্নাপুৰম ফাইনেন্সলৈ আহিছে ইজি EMI গোল্ড লোন স্কিম।
0: এতিয়া আপুনি মাহিলী কিস্তিত সুদ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিকল্পনা হ'ব আৰু অধিক স্মাৰ্ট। অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনাৰ কাষৰ মান্নাপুৰম ফাইনেন্স শাখালৈ যাওক অথবা কল কৰক টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-420-2233 নম্বৰত।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া অখিল ভাৰতীয় সংগীতানুষ্ঠান দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: সংগীত কে অখিল ভাৰতীয় কাৰ্যক্ৰম মে আপ সভি কা হাৰ্দিক স্বাগত হে। আজ কে ইস কাৰ্যক্ৰম মে হম আপকে লিয়ে লেকৰ আয়ে হে আকাশবাণী কি এক গ্ৰেড গায়িকা শ্ৰীমতী আদিতি বেনাৰ্জী কা সুমধুৰ উপশাস্ত্ৰীয় গায়ন।
4: This is Akashvani. A very warm welcome to all our listeners of National Program of Music. In today's broadcast, we bring to you a delightful semi-classical vocal recital by Akashvani's A-grade artist, Shrimati Aditi Banerjee.
3: Shrimati Aditi Banerjee ne apni prarambhik sangeet shiksha swargiya Shri Neel Madhav Sinha ji se prapt ki. Tatpashchat Gwalior gharane ke prakhyat gayak Pandit लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में MA एवं MPhil में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
4: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित under the guidance of padma bhushan shrimati shobha gurtu for nearly 14 years she mastered the authentic purab ang gayaki performing thumri dadra hori and kajri and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions in addition to topping her ma and mphil degrees in music from delhi university with gold medals shrimati aditi banerjee was specially honored by padma vibhushan गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरबंग गायकी उत्सव।
3: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ।
4: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊ।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का आमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक का आमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत।

0: और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।

0: जिनते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।